साथ अष्टपदी। जह मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह महापयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हो वै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उदारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। ला करोरी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत या कहवै। जह मार्ग यह जात अकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइयै, नानक गुरमुख परम गत पाइयै। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तह पार पराही। अनक विघन जह आए संघारै, हर का नाम तत्काल उदारै। अनक जौन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैं लामल कबू न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइयै साधकै संग। जिह मार के गने जाहै ना कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जिह पेंडे महायंद गुबारा, हर का नाम संग जियारा। जहा पंत तेरा को ना से जानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जह महापयान तपत बहु काम, तह हर की नाम की तुम ऊपर शाम। जहा त्रिखा मन तुझया करखै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरतर नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जान कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंग एकै, नानक जन कै बिरत बिवेकै। हर का नाम जान कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जान कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जान का रूप रंग, हर नाम जपत गब परै ना भंग। हर का नाम जान की वडियाई, हर कै नाम जान सोभा पाई। हर का नाम जान कौ भोग जोग, हर नाम जपत काश ना है बेयोग। जान राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन कौ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै।

सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी का सर्व का तनी श्लोक।

मन माहें जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपो अब रह नाम जपावो सुनत रहत गत सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सत हर को नाव सहज सुभाए नानक गुन गाओ। गुन गावत तेरी उत्तर सुमैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल हूँ अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास सर नाम समाल छाड़ सयानप सगली मना साध संग पावे सचतना हर पूंजी संच करो व्यवहारी हाँ सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सालाही एक सिमर एको मन आहे कसके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आ पूर्ण पूर रहो प्रभ आप अनिक विस्तार एक ते पय एक राध प्राष्ट गए मानतन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरण आए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम सर साध जना की मांगो धूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा हर के गुण गावो सास सास प्रभ तो मैं त्यावो चरण कमल स्यों लागै प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगै नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावै बिरला कोय जिन चाख्या से जन तृप्ता ने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुबर भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साधकै संग परि शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अंधिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सदगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होए उदयाल सेवकीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सपूरी रव रहया सत्संग हजूरी जिसका सातिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुरप्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो हो कामान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पाए तरियै संसार बिन भक्ति धन होसी शार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाव मन तन अंतर ही सुहाव नेत्रोपेख सरदर सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला पो को पावै सांग एक बस्त दीजै करमया गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ अक्षंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत भाए लावै मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए निकराज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सोभा तनवंत।

राम गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा तेज अमते छुटै, जा कै मस्तक कर्म प्रपाए, साध सरन नानक ते आए। जिस मन

साध सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम आगम पारा सब त्यावह है सब त्यावह तुझे हर सच्चे सृजन।

तेरी अनिक कर है हर पूजा जी, तब तपह जपह बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावह मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा, सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सबसे का जानोई,

अखल पवन के सृजनहारे, दास जान मोहि लेहु उबारे। कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़िल। सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुने मूर्चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकटना तिन नर के रहै, हो जो जा की एक बार। चौ पई को कहै चौ पई, संबत सत्रह है सहस पणिजय, अर्ध सहस पुन तीन कहिजय। भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम कुरान कुरान, अनेक है मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र भेद सबै, बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो है।

सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत। सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे।

जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु का जन्म।

0: अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अबटल अटल आद पुरख फुरमायो। कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अबटल अबचल अटल आद पुरख फुरमायो।
1: वाहिगुरु साहिब जीओ। गुण गावै रविदास भगत जय देव तरुण लोचन। नामा भगत कबीर सदा गावै सम लोचन। भगत वेण गुण रवै सहज आत्म रंग माणै। योग ध्यान और ज्ञान बिना प्रभ अवर न जानै। सुख देओ पखी तक गुण रवै गौतम रिख जिस जस गायो। कब काल सजस नानक गुर नित नव तन जग छायो। सुख दियो परीखत गुण रवै गौतम रिख जस गायो। कब काल सजस नानक गुर नित नव तन।

0: सहज जोग जिन माण्यो।
1: गुण गावे नवनाथ तन गुर साच समायो, माधांता गुण रवै जेन चक्रवै कहायो। गुण गावे बलराओ सप्त पाताल बसंतो, परथर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो। दूर बाप रूराओ अंगरै गुरु नानक जस गायो, कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो। दूर बाप रूराओ अंगरै गुरु नानक जस गायो, कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज।

तेरा जो जात छंद जले है थले है अभीत है अभे है। भुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूप है। नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं परमाथे।

इंद्रान इंद्र बालान बाल अद्भुत अंग आभांग मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम आलस्य कर्म आदिस्य धर्म।

भुजंग फरियाद छंद चतचक्र कर्ता चतचक्र हर्ता चतचक्रवर्ती चतचक्रपति चतचक्रपासे चतचक्रवास।

0: निवास है, कलंकन पनास है, समस्तुल निवास है, समस्तुल जुबा है के साहेब किरा है, ये सरबुल गुआन है, हमेशुल रवान है, परम परमेश है, समस्तुल अदीस है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, ये अचल प्रकाश है के हम तो सुभाष है, हम तो पसा है के आत्म प्रभा है,
1: हम तो अपंग है,
0: मत पार क्षमता प्रसाद गुण मन प्रणाम गुण गण मुदाम, अन गण प्रणाम मुन मन सलाम,
1: अनरखंड बनरमंड
0: अन पौ अनाश मुन मन प्रकाश,
1: गण प्रणाम जल तल मुदाम,
0: अनछिज अंग आसन अपंग,
1: माया पार गत विरोधार,
0: जल थल अमंड दिस विष अपंड, ओंकार आदि कथनी अनाद, कर कर प्रणाम चित चर नाम, अंजन जगात अनरंज बात, अडीठ धर्म अतडीठ कर्म, हर बोल मना छंत।

0: आलम प्रनासी दे आलम स्वरूपे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाह दसवें तव प्रसाद सुइए।

0: गणपति के माध्यमतं जयजसं अनुपतं सरंग सवारे
1: कोटरंग करंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे
0: पारी भुजंग के पोपिले बदनाव शेष न जाय पिचारे
1: एते पे तो कहा पे तू पत अंत को नागे ही पाए पदारे
0: जे फिर सब देश सौ को बाज दो मदंग नगारे
1: गुंजत गूर्ग जान के सुंदर हिंसक ही है राजारे
0: पूर्व विक पवन के पुवत कौंक नैनी जा पिचारे
1: श्रीपद श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सितारे
0: थिर नाम दिया दम दाम तु संजय नेम अनेक पिसे के
1: बे पुराण कते कुरान जमीन जवान सबान के पेख है
0: कौन हाच ती चता सुबह सुबह चार हजार के देखे
1: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रती बिन एक ना लेख है
0: सुदस पातर तुद बास सास ना तु जान तलेंगे
1: पारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलाएंगे
0: तोर अरे मुरो मवासन माते मतंग मान मिलेंगे
1: श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलाएंगे
0: वीर अपा बरे यार अभिचारे साकी ताप चया
1: तोर देश मिलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया
0: कार्य करां को तो इन्हा सुबातन ही चपचा लवैया
1: साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक नेक सो एक

0: पहुंच पाएंगे।
1: सात मुंह प्रसन्न फिरा जग सत्र सबैव लोग छपाएंगे।
0: मानव इंद्र गज इंद्र नराधव जंतु लोक राज करेंगे।
1: कोट स्नान अनेक सोम्बर साज भरेंगे।
0: ब्रह्म है सब सच पर अंत वे सजुन फास भरेंगे।
1: जे न श्रीपत के पश है पग ते नर फे न ते तरेंगे।
0: कहां पे जोद लोच मुंद के बैठियो पचांद गायो।
1: नहात फिरो लिया सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो।
0: पास क्यों बिकियां सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस पिटायो।
1: साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पायो।
0: कहो ले पान पुष जो सिर कहो लिंग कह तकायो।
1: कहो लखे हर वाची दिशा मह कहो पछा को सीस निवाय।

0: चौपाई हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए जित की इच्छा
1: चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो
0: पारा हमरा दुस्सबे तुम काबो आप हाथ दा मुहे बचा।

0: चतुर्दश कंता
1: काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा
0: काल पाए कर विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
1: जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो
0: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
1: जवन काल सब जगत बनायो देव दात जच्छन उपजायो
0: आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा
1: नमस्कार तिस ही को हमारी सकल जाजन आप सवारी
0: शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो
1: काट काट के अंतर की जानत पले पुरे।

0: जब उत्करख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा
1: जब आकर करत हो कबू तुम मैं मिलत दे तर सबू
0: जेते बदन सृष्ट सब तारा आप आपनी बूझ उचारा
1: तुम सब इते रहत निरालम जानत भेद भेद हर आलम
0: निरंकार निरुपकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ
1: ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा
0: ताको कर पाहन अनुमानित महामूढ़ का।

0: अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कही पूपा
1: अंडर जे रसे तज कीनी उत्पुज खान बहुत रच दीनी
0: कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं समर्थ प्यो शंकर कैठा
1: सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंबवा जुगाद स्वरूप स्वयं पव
0: अब्र छ मेरी तुम करो सिखो बार सिख संकरो
1: दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रणकाता
0: जे अस्तुज तव सरनी परे दिन के दुष्ट दुख हवे मरे
1: पुरख जवन भग

सर्व ठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख तेल हो बचाई, खेत में शरण तिहारी, आप हाथ दल हो बारी, सर्व ठोर मोह हो सहाई।

0: तू सदा रहो हर नाले,
1: हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना।
0: अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना,
1: सपना गला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे।
0: कह नानक मन मेरे सदा।

0: गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वस्या बोल है अमृत बाणी। नानक सो तत पाए, जिसनो अन दिन होली बुलागे। जागत माता के उदर में है प्रतपाल करे, सो क्यों मन हो विसारी है।
1: क्यों विसारी है, गुरु दाता जे अग्नि में आहार पहुंचावे।
0: ओस नो के हो न सकी, जिस नो अपनी लिव लावे।
1: अपनी लिव आपे लाए, गुरु सदा संभाली है।
0: कह नानक ए वरदाता, सो क्यों मन हो विसारी है।
1: जैसी अग्नि उदर में तैसी बाहर माया,
0: माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया।
1: जाति सुपाता जमे आप पाया,
0: लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमर वरताया।
1: ये माया जित सर इस है मुक्त जय पाओ दूजा लाया।
0: कह नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया।
1: अरे आप मुलक है, मुल ना पाया जाए।
0: मुल ना पाया जाए, किसे विट हो रहे लोक विल लाए।
1: ऐसा सतगुरु जे मिले, तिसनो सिर सोकी है जो आप जाए।
0: जिस दा जियो तिस मिल रहे, हर वसै।

चित जहे किशन त्यायो काल फास के बीच नायो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बसंत की बार महल।

जियो पिंड सब तेरी रास, हम बारिक ते तुमरी कृपा में, कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा भगवन, सगल

बोलो जी वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय, वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने दयावै धाए। सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिट कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बन बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान मिसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी।

दीनन की प्रतपाल कर नित संत बार गनी मन गार पछ पशु नग नाग निराधप सर्व समय सबको प्रतपार ओखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार दीन दयाल दया निद दोखन देखत है पर दीत ना हर तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो रखन हार दयाला नानक

तत सब को नवे आपको पर को नवे न कोए कर तराजू तो लिया नवे सगोरा हुए अपराधी दो नानवे जो अंता मिर गाए सी सुनवाई है क्या थी है।